0: stranded a stranger.
1: Sir, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए.
0: Oh baby.

साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम।

सादा काबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खसी है।